खनाई तो नहीं रंग सकती था खुबखु आशिक चढ़ाते ही खनाले के संग दिए बड़ी रिसापंग नरक जो तने नो बेलाई बेले के नलाम शोगो तिनी नी ओ शाल कमा पांडा फायदी ताबुक संग चंगलाई सीने तिनी नी शाल कमा पांडा नी कॉक बोधमा तिनी नी शाल नो रुक सावी नो खनाई तो नहीं रंग सकती था खुबखु तिनी तिनी नी शाल अबो जुदा खलाई कैसा कैसा बुमुंग बाय एवं कैसा सामुंग बाय कैसा वनसुक मुंग बाय कैसा गदाल मुंग बाय ते कैसा चिनी मकल नी नुक मुंग आमते हई दमुंग चामुंग बाय गदाल जा तिनी निशाल नो जुदा खलाई सिनी चक मनी खा तिनी निशाल सुसाइड प्रिवेंशन डे हने तिनी निशाल नो पालाई जाको रंगसक नि दाखु बखु वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एवं WHO अबो तिनी निशाल नो जे बर रोग शाक बाय थांगनो बुथारी खिबनाय एबा शाक बाय थांगनो सकमरनाय आबरक नि ककनो वानसुगुइ आबरक नि वानसुक मंगनो फनांगया ख्लायै बरकनो खाबाय सामुंबाय गदालमुंबाय बरकनो कासुनानि पाकै जे बर रोग आत्महत्या ख्लायनाय इंगाखेबा शाक बाय थांगनो बुथार खिबनाय आमतिहाय बरकनि बखानो सचानानि बाकै ते संसारानि बाकै तिरिनि सालनो सुसाइड प्रिवेंशन डे होनै पालाय जाखो रांसाखनि दाखु बखु अबसिनि कैसा हदानि इंथुन उंगिया कैसा दफानि इंथुन कैसा तमुं चामुं कैसा नुकजाकमुं अजागाव ताबुक अबहाय तमुं एबा साक साकनो साक साक थै

0: स्नामजाक मानैनो जायावै दावनानै नांनाय सालो सालब्रुम ब्रुमनो सती थामसिनि सिमि सती ब्रैजिबा मिनिट जरा जेसके फानो हिमनानि नांनाय उखेबा ब्याम रग फानो ख्लायनानै नांनाय स्ट्रेस तै आमतिहाय वानामा सिंसा तमुं चामुं हामिया चामुं दुमा बिरि सिगारेट चुवाक तै ड्रग्स आमतिहाय चामनि मानै रगनो याखारनानै नांनाय सालब्रुम ब्रुमनो नों निनि चामुंगो कलेस्ट्रल गुरै तै ब्लाड प्रेसार बारिया जात उखेबा सुगार बारिया जात आमतिहाय मानै जानानै नांनाय आसुगजरा जों दिनैनि हायुंनि खरांनि साखामग्रानि गगो सिख्ला रगनि बिसिं तामनि बागै हार्ट एटेक ओं तै आबुनो कासुनानि बागै ककलाम खोनालायखा
1: पान्दाव जों दाबो सायमान लायनो कक थुम रग नेशनल लॉ एकाडेमी एबा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी त्रिपुरा कैसा अयमुंगनी बिशिंतै रंगबिशी नैसाय नैचिदक नैचिसिनी पीएचडी प्रोग्राम भर्तिनि बागै साखलायखा आरो बेकुलि बुक जाजुक थाय दङ कायदक आरो फुल टाइम दङ कायनै पार्ट टाइम दङ कायब्रै आरो नबिसिङो इ वार दङ कायथाम एससिओ कायसा एसटिओ कायनै कयलायरुपुर एसटि एसिरंनि बागै रां नि कक साजाखा आरो रां खक बाराखे याफारना नांनाय मुजुंनाय केन्डिडेट रग इउनिभार्सिटिनि अफिसियेल वेबसाइटआव थांगै कयलाय सुफुङै लगिअ साख्लायजाक रां दिवै याफारना नांनाय अबनतै नरग बरंनि वेबसाइट नायमानो अबंखा www.nlutripura.ac.in वेबसाइटआव कयलाय रोनानि पायथाक सालमारि हिनखाय इ सेप्टेम्बर तालनि साल नैजि सा सालमारि अब हेके नै केसा दङ हास्ते हाफांनि दिप्रासा नायतुक तै हुकुमु बेदेक हास्ते जुगजाक दिप्रासा लुकुरक लुकुरक न एवार्ड अफ एस टी पार्सन्स अफ एक्सिलेन्स नैसाय नैचिदक नैचिसिनि सकात निबागै कयलाय याजागै दङ साबर कयलाय रैमान होनखाय त्रिपुराबो तंसुकनाय एस टी बसंनि बरग्रक ओंना नांनाय कयलाय रोना नांनाय पहिला डिसेम्बर नैसाय नैजिबानि सिमि थामजि नभेम्बर नैसाय नैजिदकनि बिसिंग हुकुमु थोंमुं कक्रोबायदै गुबुननि हाक्टर एबा खेबा हायुं रोगजाक बेरेमो सकात मानजाक ओंना नांनाय अब drci.tripura.gov.in अबनि बिसिंतै कयलाय रिमान बायनाय कयलाया फानानि पायथाक सालमारि हिंके नभेम्बर तालनि साल थामजि सालमारि जरा अब हेकेनते गेसा दङ हास्ते हाफांनि एनिमेल रिसोर्स डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट बाय अफिस एबा खेबा अफलाइनतै काउन्सिलिंनि बागै साख्लायजागै दङ अब कलेज अफ भेटेनारि साइन्स तै एएच आर के नगर त्रिपुरा नैसाय नैजिदक नैजिस्नि रोंबिसिअ बि भि एस सि तै एएच बिसिबानि कर्स काउन्सिलिंनि बिसिंतै भर्तिनि बागै बेकुलै आजुगथाय दङ अर कायजिबा आरो बिसिङो इउ आर दङ कायजि एस टि अ दङ कायब्रै एस सिनि बागै दङ कायसा तै ओबिसिनि बागै दङ कायथाम थाय हिनखे अब डाइरेक्टरेट अफ एनिमेल रिसोर्सेस डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट पि एन कमप्लेक्स गोर्खा बस्ति आगरतला कयलाय काउन्सिलिंनि सालमारिनि सालमारि साजाखा अर सालजि एबा तिनि सांग्रं साल फुं दामजि सावो अर नांगुकमानि डकुमेन्ट्स रगबो लगि नांनाय हिनि साजाखा अर हंखे माध्यमिकनि एडमिट कार्ड एबा खेबा बार्थ सार्टिफिकेट टि जे इ इ नैसाय नैजिदकनि एडमिट कार्ड तै मेरिट पजिसन एबा खेबा कुचुक बेरेमनि मार्कशीट तै लगिअ पि आर टि सि बे तंनो नांनाय हिनि साजाखा लगि तंनो नांनाय एस टि एबा खेबा

एसि सार्टिफिकेट तै मांगबिली पासपोर्ट साइज नि कायनै रना नांनाय रोंमारिनि कक साजाखरो कुचुक माध्यमिक पास इंलिश तै साइन्स ओंना नांनाय हिनि साखा तै ल अरो नम्बर नि कक साजाखा 40% एस टी एस सी रक मानजा खेनो अरो काउन्सिलिङ थांमानि हिनि साजाखा हास्ते हाफांनि डायरेक्टर अफ मेडिकल एडुकेशन कायसा अयमुंनि बिसिंतै साख्लायखा एम डी एस एबा खेबा मास्टार अफ डेन्टल सार्जारी कर्स रिम्स इम्फल भर्तिनि बागै आबुनि बागै त्रिपुरानि नीट एम डी एस नैसाइनि जि डक आमजुग मुंग पास्तै सेबुख्लायजाग रक डेन्टल सार्जन रक कयलाइया फोरमान बायनाय कयलाइया फोरनानि बायथाक सालमारि साजाखा इ सेप्टेम्बर तालनि साल जिब्रै सालमारिनि सारिक दामब्रै जरा निकुमानिकक साजाखार नांगुकमानि कागज रकनि लगि कयलाइ डिएन एकाडेमिक्स रिम्सनि आरो कम्पिटेन्ट अथरिटिनि बिसिंतै फरवार्ड खालाय रहना नांनाय हिनि साजाखा लुकुरक्न कायसा आयमुंनि बिसिंतै साख्लायजागै दङ आम्बासा आइ सि डि एस प्रजेक्ट आम्बासा पौर परिषदनि अंगनबाड़ि सामुंख्लायनानि बुक जाचुकथाय सुबुंना बागै वार्क इन्टारभिउनि बिसिंतै बुक जाचुकथाय सुबुं जागोन मुजुंनाय सामुं नायनाय र कयलाइ आफाना बागै बरग्न कायसा आयमुं जिसिंतै कबक जाखा कयलाइ आफानानि बायथाक सालमारि हिनकांगे सेप्टेम्बर तालनि साल जिब्रै सालमारिनि सारिक दाम्बा जरा अबाहेकेन तैकेसिया ककथुम दङ त्रिपुरा अ दंसुकनाय दिप्रासा हामक्राय बेदेक हास्ते हाफां कायसा आयमुंनि बिसिंतै रोंरेम चुकुनि सिमि रोंन कदर दिप्रासा रों सोंनाय रक्न मागनां बिजाब रियावै रांग्रोनानि बागै साख्लायखा आबंनाय बि एम एस पर्टाल डट त्रिपुरा डट जि इउ भि डट इननि बिसिंतै आबोनि बागै कागज रगनि कक साजाखा पासपोर्ट साइजनि मागबिलि गायसा नेस्ट्रि सार्टिफिकेट सोकां रेबनि मार्कशीट रेशन कार्ड आरो रों सोंनायनि मुंखा साजाखांना नांनाय तै लगिय' बेंक एकाउन्टनि कागजब रोना नांनाय कयलाइ रोनानि बायथाक सामारि दिनि जरा आसुक जरा जों दिनि खोनालायखा कक थुम रक दाबो खोनालायनो सेबुग बरगलांमोनि कक

Tabu, Sebago Borok Langmaniko, 10th Assistant Professor Grad 2, Abo Contract Basis, Tlangzaknai, Abo Department of Computer Science and Engineering ni Bechebo. Abuni Baki, Details Rokunkha, Aba Bini Opusto, Jomarana Nipaki, Aba Koile Rina Nipaki, Abo Assistant Professor Grad 2. अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो वैकेंसीज तंगो ओ जगहो काइची अब अनरिजर्व रोकने बागे काइदो ई डब्ल्यू एस ने बागे काइशा एस सी ने बागे काइशा ते ओबीसी रोकने बागे काइने अब लेवल 10 ते अब 7 सीपीसी पेनी पे मैट्रिक्स नो रुकी अब रजाकनाई क्वालिफिकेशन एबार रुंगमारी इंगनानी नांगनाई PhD in Computer Science, te Engineering, CSE Information o tongnani nangnai, Technology eba IT, ngyakheba Allied Area o bini First Class Klaiyei pass unzak eba degree manzak ngnani nangnai. Last date eba obono obuni baki

0: गे ओ ओ जे सलनाय ब्यामार एबा सलनाय जे वानसुखुं हामिया बै गोरों मानि अबो अबो किन्तु चिनि सानानि थांगे कासे सुसियेल कासे सराइमुं उंगि दङ अबो अबो अबो जे केबो सायरि मानिया जे अबो माने इंग्लाक केबनि नुखुङाव इंग्लाक एबा केबनि आमचायो नुंग्लाक इंग्लाक इंग्याखेबा केबनि पाराव इंग्लाक इंग्याखेबा केबो अमतिहाय सामुं बाय गोदाल गोलाखनि केबो सायसिरि मानिया अबो काइन्ड अफ कैसा तारमाने बेराम तै काइन्ड अफ अबो कैसा सुवासे इं अबो कैसा सलनाय कैसा बेमार अबो इंके अबो इं सादि
1: अबो
0: पॉजिटिव थिंकिंग
1: रंगसकनि
0: थाखोबोखौ जों साहित्य मानलायखा तामनि कारन एबा तामनि बागै अमतिहाय साकसाकनो सकमरनानि लामो थां आबो जों सायमानो रमदि फिजिकल ते बायोलजिकि बायोलजिकल फैक्टर रम दि सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर तो रम दि पर्सनल लाइफ क्राइसिस रम दि आपनो कारिबो मेंटल हेल्थ कंडीशन आम दे हेरो कबांगमा बेचेबोनो कबांगमा तोमुंग बाय बा कबांगमा वानसुक मुंग बाय बा रम दि कबांगमा बिनि खा खेक मानि बाय खाबो बो वानसुक मान हरिया मानि बाय गोबां मानो कजेस एबा गोबां मानो तंगै मानो फियाबा ओ साक साकसेस सोसाइट क्लाइमानि अबो जत्नि सिलाय कतर हुनखे अबो बिनि मेन्टेल डिसबेलेन्स न अंगै थांगो मेन्टेल डिसअर्डार अंगै थांगो बेलाय बेलाय कस्ट' बेलाय बेलाय अपमान अंगेखेबा लाचिरु लाचिमुं रुजाक मुंगो बेलाय बेलाय क्राइसिस रमनि बेलायखेनो रां पैसा गोरै बेलाय बिग्रा तै बेलायखेनो वायसौसु रमदि सामुं चाया मामां इंगेखेबा बेलायखेनो बिनि साक चाया एबा बेराम कतरबाय मानजागै सही मानलिया आमति हायरक नुगजागो आमति हायरक बो नुगजागो रमदि बिनि बोखा बेलायनो बाय थांखा हामजाकमानि ककनो रुगै हामजाकमानि बरकनो रुगै हामजाकमानि तमुं चामुंनो रुगै गोबां मा कजेस नो सों नुगो ताबुकनि ससाइटिओ ममति हायरक नुगजाकमानि तिकेसा दङ ताबुक चामुं नुंमुं रमदि बो एल्कहलिक इंगेखेबा बेलाय फेकजाक फेकनाय मानै फेकजाक तमुं आमतिहाय तमुं नुगजाखा होनगे ड्राग्स एडिक्ट ओंनाय रक बरक बहायर' आमतिहाय लामनो बरक सायै नाहारो बोखा जेफ्रु मुंसा लामा गोरै आमतिहाय ओंगै दंफ्रु निनि बोखानो पजिटिभ एनार्जि तुबनानि बागै बोखानो गाहामखौ ख्लायै गाहाम मेन्टेल हेल्थ न' जों गाहाम ख्लायनायनि बागै चिनि रमदि आब' जों काउन्सिलिं बेलायनो नांगौ नों तावानसुखदि नों सायसुं सायसुं साक साकनो साफिसियेन्ट होनै नों तावानसुखदि चिनि बोखाबाय चिनि बोखानो चुबानाय एबा चिनि बोखानो कक सासमायरनाय ओंयाखेबा चिनि बोखानि वानसुक मुंबाय गोरोङै निनि बोखानि फानबाय फान गोरोंग्रोनाय आबुन अंखाजों गोबां मा ककलाम गाहाम गाहाम बेचेपनि बिजाब रक ते गाहाम बेचेपनि एबा गाहाम बर रकनि वानसुक मुं गाहाम बर रकनो वानसुगै बिनि तमुं चामुंनो उतुमनानै

0: आफ्नो चिनी बाई थाङ्नी लाम अङ्गानी नाङ्गो आफ्नो कारिबो चिनी भारत सरकार बाई टेली मानस सनितङ्गो आबो 1800-89-14416 ओ जागाओ दादाक सिदाक तुमुङ कल खलाइग्या के अबो 24 घन्टा अङ्गे खेबा हपुङ सापुङ नो मेन्टल हेल्थ नि बाकै एबा काउन्सिलिङ नि बाकै निनि बखानि फान नि बाकै ननो कक लामो गोरोंनाय दङ आबुनि बाकै नर टेलि मानस भारत सरकार बाय अबो तैदुलजाक अबो 1800-89-14416 अबो रां पैसा रुया उइनो हपुङ सापुङ अ जागाओ निनि बखा बखा बायमानि एबा बखानि कन्डिसन नायि अ जागाव गोबांमा काउन्सिलिं खायजागौ आबुनो कारिबो आइ कल हेल्पलाइन अबो 9152987821 अबो फुंनि दामचिनि सिमि हरनि दामचार जरा अ जागाओ नों जे ककमुं बाय काउन्सिलिं नानानि मुचुंगो एबा बुजक जाखनानि मुचुंगो आ कक बायनो ननो बरक बुजकनाय निनि बखानि फान बारिरनानि बाखै निनि हामिया वानसुक मुंनो सकमननानि बाखै अबो हेल्पलाइन जेफ्रुफ्रुबो खुलकजाक तंगो आव रांसाकनि दाखोबोखौ खायनो हाय कक दुगो हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: फुंकाहम
1: फुंकाहम
0: बेलाय न लाम सगो सादि साबंखा
1: आंदे समकाल जमन दे आंखौ इचा खनाखा खूब फाहामनि खबर न आबो किन्तु इनि उगस खांनि
0: ए
1: लामा तानि फलां थामा जा दे थानाय र इनजा करै
0: आउ
1: दिनि बक्रो डिस्क्रेट इनजा
0: सोलोंलाय दङ आव आव
1: आबोनो তারমানে জনক সরঙ্গাইতে দেখাবো আমি ও জীবন কামত সাধারণ মানে চতুর্দিকে দিনে রাউন ফ্যামিলি হইতে সব কিছু রকমের চিন্তা খাই দুঃখ নিয়ে তো কিছা তো উনি আনতে কপা দিব
0: আবো না
1: নিশ্চয় বাধ্যতামূলক লাইব ফোনকা হাম দেও
0: বেলাই না বেলাই না হাম ভাই আও আও খনাই তো নাই রং শক্তি তাকু বুকুক সুসাইড প্রিভেনশন তিনি আবনের গে হজাক রুমুং এবা অবন কাসুনানি পাকি ককপিডনানি সাল আপনি পাকি তিনি সাল কামা পান্দা ও সুসাইড প্রিভেনশনের গে চেন ককলাম সালাই দঙ্গ নরক যতন কবক নাই গরঙ্গানি পাকি গরঙ্গি মানো ককদুক নাম্বার 2326253 হাইন হাই কিটিংগি সাফিরানো নই থাম নই দক নই বা থাম হ্যালো হ্যালো ফুঙ্কাহাম ডাকো फुंकाहम फुंकाहम सादी दो
2: खाम गनि अबनि दो
0: दो दो
2: ई तो जिनि लांगो तंगै सतु इरे अमोसन अनेक त दिग दै नुमता सेन
0: आव आव
2: इन चेतुरि नि जंगाय आशा बरोकै बो इनि अबाब नि गुनि बथिनै दो एकै सेका खान्दु मुमा यांगै थेने बतो एकै सेकै
0: आओ
2: तुम फ्री पैकेज और प्रमोशन में जितने चाहिए
0: हो
2: ये बताओ

आव जों बलाय खाना खाना तो रेजाम जों खाना लायखा फारि जों हाजुकनि रेजाबंगतै बर रेजाबं खाना लायमानि बखाक थांलायबानो बजाराव खाना लायनाय चांदिनी मारक बाय रेजाबजाक रेजाब फारि बजाराव खाना लायनो

आओ बलाय खना खना तो रसा मुंग जों खना लाय खा आओ जों जिनी पांडा आदै किशा जरा तंखो आ ओ जराव जों हायनो हाय सिने हाजुकनि रसा पुंनो जों खना लायनो हाजुकनि रसा पुंग रक बलाय नो जिनी लांगमानि नांगुक मानि गायशा रसा पुंग आगिनि साल रगो आगिनि जरा रगो

हाँ बलाय हम भाई बलाय हम भाई खनाई तुम नीचे ने पांदा बलाय के देवर का हम साल का हम थांग तुम ने हम भाई आओ फड़ी के चिंग चिने ताको रमद्र कोक सलाते सलाते चिने खाना ना मुचुंग मानी ताकोक ओले साबुन फड़ी खाना लायना